0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
1: Ayo, G-Funk.

0: Hits from Home.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए मुझे, ये बताइए कि ग्रोसरी शॉपिंग करते समय आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है। 04397997667 हमारा नंबर है। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, इसके बाद बात करेंगे मध्य पूर्व में फिर बढ़ते तनाव की, और फिर प्रस्तुत करेंगे भारत की खबरें इंडिया रिपोर्ट में। इसके बाद होगी 1 जुलाई से टैक्स व्यवस्था में आने वाले नए बदलावों की चर्चा, और बाद में सुनेंगे कैसे फीफा विश्व कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी निशान वेलुपिल्ले युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। अंत में बजाएंगे आपकी पसंद के गीत, तो कोई गीत सुनना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइए 04397997667 पर। वरना मैंने आज आपसे पूछा है कि भाई ग्रोसरी शॉपिंग करते समय आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, जवाब आप 04397997667 पर ही दे सकते हैं। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया और वानुआतु ने पहला आपसी रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को वानुआतु का प्रमुख सुरक्षा साझेदार माना जाएगा। हालांकि समझौते की शर्तें ऐसी हैं कि वानुआतु चाइना के साथ अपने संबंध भी जारी रख सकेगा। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वानुआतु में चाइना की वित्तीय मदद से होने वाली परियोजनाओं पर उसे वीटो अधिकार मिले, लेकिन वानुआतु ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर हालिया जनमत सर्वेक्षण के अनुसार पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट उनके नेशनल प्रेस क्लब में दिए गए विवादास्पद संबोधन के बाद आई है। न्यूज पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ लेबर पार्टी 33% समर्थन के साथ मामूली बढ़त पर लौट आई है, जबकि वन नेशन का समर्थन 2% घटकर 29% रह गया है। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि सेनेटर पॉलिन हैंसन की लोकप्रियता रेटिंग 10 अंक गिरकर न्यूट्रल से -10 पर पहुंच गई है। वहीं विपक्षी गठबंधन का समर्थन घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 17% पर आ गया है। विपक्ष नेता एंगस टेलर ने स्वीकार किया कि गठबंधन को अभी काफी काम करना बाकी है। दूसरी ओर रिटायरमेंट के लिए सुपर एनुएशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई अब भी संदिग्ध निवेश योजनाओं के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये चेतावनी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन ने फर्स्ट गार्जियन और शील्ड फंड्स के ध्वस्त होने के बाद जारी की। इन फंड्स में निवेश करने वाले मेहनतकश ऑस्ट्रेलियाई अत्यधिक जोखिम वाले इलिक्विड निवेशों और कथित धोखाधड़ी का शिकार हुए। इस मामले में लगभग 11,000 लोगों को कुल $1.1 अरब का नुकसान हुआ है। ऊंचे मुनाफे का लालच देकर कई लोगों को पारंपरिक सुपर फंड छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद कई निवेशकों की जीवन भर की पूरी बचत डूब गई। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों में बच्चों के टीकाकरण की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फर्स्ट नेशंस बच्चों के टीकाकरण में आने वाली बाधाओं और सहायक कारकों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दूरदराज इलाकों से परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और सीमित समय और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सेवाओं की कमी जैसी व्यावहारिक चुनौतियां प्रमुख कारण बन रही हैं। और अब बात फीफा विश्व कप की। ब्राजील और जापान के बीच प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को लेकर रोमांच अब चरम पर है। ये मैच ऑस्ट्रेलियाई समय के अनुसार मंगलवार तड़के 2:30 बजे खेला जाएगा। ब्राजील रिकॉर्ड 6वां विश्व कप जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि जापान 4 प्रयासों के बावजूद अब तक विश्व कप के नॉकआउट चरण में एक भी मैच नहीं जीत पाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद इस सप्ताह 33 लोगों को बचाया जा सका। हजारों लोग अब भी लापता बताए गए हैं, जबकि और जीवित लोगों को खोजने का समय तेजी से कम हो रहा है। बुधवार को आए इन दो भूकंपों में मरने वालों की संख्या 1400 से ऊपर आई है। सैकड़ों आफ्टरशॉक्स ने नुकसान को और बढ़ा दिया है और लोगों में अब भी डर बना हुआ है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में अयोध्या के राम

0: में चढ़ावे में कथित गबन मामले की जांच तेज हो गई है। आशंका जताई गई है कि ये चोरी करोड़ों रुपयों की हुई है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 80 लाख भारतीय रुपयों को बरामद करने का दावा किया गया। जांच में सामने आया है कि दान गिनने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गर्मी से जूझ रहे भारत में लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून तक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन 1 जुलाई से गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। इसी के साथ 29 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं मध्य पूर्व में एक बार फिर से बढ़ते तनाव की। अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों द्वारा फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होने की नई खबरें सामने आ रही हैं, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या है ये आरोप प्रत्यारोप, क्यों शुरू हुई है ये फिर से सैन्य कार्रवाइयां और क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में, आइए सुनते हैं नताशा कॉल की इस रिपोर्ट में।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने तक चली लड़ाई रोकने पर सहमति बने अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने इस नाजुक युद्ध विराम को एक बार फिर खतरे में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं लेबनान और गाजा में भी हिंसा जारी है, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। इस महीने अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी संघर्ष पर विराम लगाने पर सहमति जताई थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए हुए समझौते अब बढ़ते दबाव के बीच फिर से परीक्षा की घड़ी में हैं। सप्ताहांत में अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हमला करने का आरोप लगाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इनमें निगरानी प्रणाली, वायु रक्षा ठिकाने और ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित ड्रोन सुविधाएं शामिल थीं। तेहरान का कहना है कि ये हमले हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वहीं वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का प्रभाव और दबदबा दिन ब दिन कम होता जा रहा है।
2: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster, literally every week as we speak.
1: एक बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कमर्शियल समुद्री यातायात को फिर से सामान्य करना पूरी तरह तेहरान की जिम्मेदारी है।
3: تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
1: اس نئے تناؤ کے باوجود کمرشل جہاز اب بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر گزر رہے ہیں۔

0: युद्ध विराम का उद्देश्य केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में हाल के दिनों में बढ़ते तनाव को कम करना भी था। हालांकि लेबनान में अमेरिका समर्थित ढांचा समझौता पहले से ही दबाव में है। हिजबुल्ला ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है, जबकि इजरायली सैनिक अब भी सदर्न लेबनान में तैनात हैं। इजरायल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी उत्तरी सीमा पर मौजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। सप्ताहांत में दक्षिणी लेबनान के एक कस्बे में इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल की कार्रवाई का निशाना हिजबुल्ला मिलिटेंट्स रहे हैं।
1: אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו מסיבה פשוטה, כי הקינו קשות את חיזבאללה, וחיזבאללה שציפה לסיוע של איראן לא קיבל אותה, לא קיבל את הסיוע הזה, כי הקינו קשות את איראן. ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה הנפלאה של לוחמנו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ומתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינג' בל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, כל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור. אנחנו מחסלים את הכל. עכשיו עוד לא סיימנו. יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא לפתרון. אבל מה שברור זה דבר אחד. יש פה הישג היסטורי. וההסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, והוא מחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות.
0: इस बीच गाजा में जारी संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। फिलिस्तीनी अस्पताल अधिकारियों का कहना है कि इजरायली ड्रोन हमले में उन विस्थापित परिवारों को निशाना बनाया गया है जो तंबुओं में रह रहे थे। खान यूनिस के पास मुवासी क्षेत्र में हुए एक हमले में 15 वर्षीय इस्लाम मूसा और उसके 30 वर्षीय भाई अब्दुल्ला मूसा की मौत हो गई। इस हमले में कम से कम 7 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने इस क्षेत्र में एक हमास मिलिटेंट को निशाना बनाया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। कुछ घंटों बाद पश्चिमी गाजा सिटी में हुए एक और अन्य हमले में कम से कम 12 लोग घायल हुए। इस बीच मानवीय सहायता संगठनों का कहना है कि व्यापक युद्ध विराम की नई कोशिशों के बावजूद गाजा में हालत अब भी बेहद गंभीर बने हुई है। इस संघर्ष में मानवीय कीमत इजरायल में भी अब महसूस की जा रही है। हाल के हफ्तों में हुए समझौते फिलहाल लागू हैं, लेकिन बीते सप्ताहांत हुए हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों ने दिखा दिया है कि ये युद्ध विराम अब भी बेहद नाजुक बना हुआ है। दुनिया की बड़ी ताकतें क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन इसका परिणाम अब पहले से कहीं अधिक अनिश्चित दिखाई दे रहा है। SBS न्यूज से SM अल गालिब की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।
2: और इस खबर के बाद अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है पहले अंतराल का। एक अल्प विराम के बाद चर्चा करेंगे भारत की बड़ी खबरों की, जिन्हें लेकर के आएंगे आपके लिए मनन कुमार। इसी के साथ मैंने आज आपसे सवाल पूछा है कि भाई ग्रोसरी शॉपिंग में आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, और अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। दोनों के लिए एक ही नंबर है 04397997767। जल्दी जल्दी भेजिए अपने संदेश। मैं एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आ रही हूँ। वृशाली बस अभी हाजिर होती है, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए।

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: इनसाइट एसबीएस का पुरस्कृत करंट अफेयर्स ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे हर मंगलवार 8:30 बजे एसबीएस और ऑन डिमांड पर
3: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक देखिए एसबीएस वाइसलैंड चैनल 31 पर
4: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
5: It is race on.
4: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
5: The tension, it is going through the roof.
4: Race for the rivalries, the sacrifice, and the ultimate test of endurance. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
6: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है एसबीएस हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृषाली को और अब आइए करते हैं रुख सबसे पहले भारत से आने वाली खबरों का जिन्हें लेकर के आते हैं हर सोमवार को हमारे लिए मनन कुमार इसी के साथ मैंने आपसे पूछा है कि भाई कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बता दें मुझे मैं आपके लिए उसको लेकर के हाजिर हो जाऊंगी 04397997667 हमारा नंबर है
7: SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार पेश हैं भारत के समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीका के निकट स्थित सेशल्स गणराज्य के 3 दिन के दौरे पर हैं रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी की बातचीत के बाद भारत और सेशल्स ने 19 समझौतों और पहलों की घोषणा की इससे रक्षा समुद्री सुरक्षा डिजिटल पेमेंट अंतरिक्ष स्वास्थ्य सेवा कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ेगा रविवार को सेशल्स के राष्ट्रपति हरमनी की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया
8: आवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट Our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Albany Topaz this morning and reviewed the remarkable progress achieved in our partnership. We also discussed our shared vision for the future. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across region Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
7: इसके पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन में जायंट टॉर्टाइज एनक्लोजर में भी गए जहां उन्होंने एक पौधा लगाया मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके जायंट टॉर्टाइज एनक्लोजर के दौरे को लेकर पाखंडी हरकत करने का आरोप लगाया है पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार की ग्रेट निकोबार परियोजना भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आवासों के लिए खतरा पैदा करती है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जहां एक ओर मोदी ने सेशल्स की यात्रा के दौरान अल्दाबरा जायंट कछुए को सम्मान दिया वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार एक ऐसी परियोजना को आगे बढ़ा रही है जो लेदर बैक कछुओं जैसी प्रजातियों के आवास को नष्ट कर देगी, हजारों कोरल कॉलोनियों को खत्म कर देगी और द्वीप की अनूठी जैव विविधता को बर्बाद कर देगी। भाजपा सरकार बेशक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को सफलतम बता रही हो, लेकिन कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख के माध्यम से मोदी सरकार पर गजा में इसराइल की सैन्य कार्यवाही के रुख को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि इस आयोग की अगुवाई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की कार्यवाही का मकसद गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गजा को लेकर भारत की मौजूदा नीति विदेश नीति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी आलोचना की और कहा कि लगातार बढ़ते सबूतों और कानूनी कार्यवाहियों के बावजूद दुनिया इस संघर्ष को रोकने में नाकाम रही है। भारत को ऐतिहासिक रूप से फलस्तीन का समर्थक बताते हुए उन्होंने लिखा कि इस नीति से पीछे हटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार चुप्पी नैतिक और रणनीतिक दोनों नजरियों से सही नहीं ठहराई जा सकती है। श्रीमती गांधी के लेख का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा चुनिंदा मुद्दों पर ही आवाज उठाती है।
9: सोनिया गांधी स्पीक्स अप फॉर द मुस्लिम्स इन गाजा, दे ट्वीट अबाउट राफा बट दे आर साइलेंट ऑन हिंदूज इन ढाका एंड दिस शोज दैट फॉर देम इवन विदेश नीति इज कैलकुलेटेड ऑन द टेबल ऑन द कैलकुलस ऑफ वोट बैंक।
7: सेशल्स की सफल यात्रा के बरक्स भारत की कूटनीति पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ असफल होती दिख रही है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद दोनों देश मोंगला बंदरगाह सुविधाओं के आधुनिकरण और विस्तार परियोजना तथा चिट्टागांग में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन का अधिकार हासिल करके एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की थी, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मोंगला बंदरगाह का ठेका भारत के बजाय चीन को दिया जाना संबंधों में दरार के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी एक संयुक्त बयान ने भारत का विशेष रूप से ध्यान खींचा है। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश का मानना है कि चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना बांग्लादेश के लिए विकास के महत्वपूर्ण अवसर लाएगी। दोनों पक्ष अपनी व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी को और बेहतर बनाने पर सहमत हुए ताकि नए दौर में साझा भविष्य वाले चीन बांग्लादेश समुदाय का संयुक्त रूप से निर्माण किया जा सके और दोनों देशों व लोगों को अधिक लाभ मिल सके। इस संबंध में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मुहिम पर बांग्लादेश नाराज है और उसने भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भेजी गई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की फेहरिस्त पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। विश्व प्रसिद्ध क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार से 6 छात्रों के साथ अनशन की शुरुआत की। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट जाकर प्रार्थना भी की। श्री वांगचुक के इस प्रयास से सीजेपी अपने आंदोलन में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 13 महीनों बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 सैनिकों के नाम

0: पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद में झूठा बयान देने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप के प्रमाण में श्री सिंह द्वारा 28 जुलाई 2025 को संसद में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
1: और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं।
0: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने इन जवानों की शहादत एक साल तक सार्वजनिक नहीं की, उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। दो ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को उस समय 6 जवानों की शहादत की जानकारी नहीं थी, या उन्होंने संसद को गुमराह किया। दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दावा गलत है कि शहीदों को पहली बार सम्मान मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 6 शहीदों को पहली बार अब सार्वजनिक सम्मान मिला है। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मंत्रालय का कहना है कि शहीद सैनिकों के नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
2: और अब एक गीत जो मैं आपके लिए एक्चुअली लाना चाहती थी कल, लेकिन कल समय कम था तो ये गीत वहाँ से लेकर के आ रही हूँ। कोई आप सुनना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास एक संदेश आया है जहाँ पर उन्होंने सिर्फ गीत का नाम लिखा है, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ तो दिलों की डोरियाँ गीत है। अगर आप मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकें तो मैं ज़्यादा अच्छा।

0: SBS News In Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS World News, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS World News हर रात 6:30 बजे SBS और SBS On Demand पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम, SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
1: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
0: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
0: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
4: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को। और सुनिए, आज है 29 जून, यानी कि एक और दिन में आने वाला है नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्तीय वर्ष। बहुत कुछ बदलता है एक फाइनेंशियल ईयर के साथ। 1 जुलाई वो तारीख होती है जिस दिन बहुत सारे नए बदलाव लागू किए जाते हैं। तो आपके लिए कैसे अलग होगा ये 1 जुलाई से आने वाला नया फाइनेंशियल ईयर, इसी पर एक आसान भाषा में रिपोर्ट, एक आसान भाषा में पॉडकास्ट लेकर के आ रही हैं स्वाति शर्मा।

0: आइए सुनते हैं।
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की श्रृंखला
2: मनी मैटर्स।
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। नया फाइनेंशियल ईयर यानी नए नियम। हर साल पहली जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में कई चीजें बदलती हैं और इस बार के बहुत से बदलाव सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। आपकी तनख्वाह, आपका सुपर और आपके परिवार को मिलने वाली पेमेंट्स और घर के रोजमर्रा के खर्चे। हाल ही में हमने मनी मैटर्स के नाम से सीरीज की, जिसमें हमने पैसों, टैक्स और सुपर से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर आसान भाषा में बात की। आज एक खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि पहली जुलाई से क्या क्या बदल रहा है और इन बदलावों का आपके लिए असल में क्या मतलब है। और इस सब को समझने के लिए हमारी मदद करेंगे टैक्स सर्जन के नाम से मशहूर नितिन सैबी, जो 15 साल से भी अधिक समय तक ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस में टैक्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में। नितिन, शुरुआत वहीं से जहां सबसे पहला फर्क दिखेगा, यानी कि हमारी तनख्वाह जो है पहली जुलाई से नेशनल मिनिमम वेज बढ़कर $26.44 प्रति घंटा हो रहा है, यानी 4.75% की ये बढ़ोतरी है और साथ ही इनकम टैक्स में भी कुछ राहत मिली है। सवाल यह है कि ये बदलाव अपने आप ही लागू हो जाएगा या लोगों को कुछ करना पड़ेगा?
4: आई थिंक सबसे पहले कि आपने जैसे बोला कि मिनिमम वेज जो है वो 4.75% बढ़ गई है, इसका कोई एज सच एम्प्लॉयज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर को ऑलरेडी दे देंगे, वो इंक्रीज करके देनी चाहिए एम्प्लॉयज को। पर हो सकता है कि एम्प्लॉयज को भी मैं बोलूंगा कि प्रोएक्टिव होके अपने एम्प्लॉयर्स से चेक करें कि उनकी मिनिमम वेज बढ़ गई है नई पे स्लिप में। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, आपने बोला कि इनकम टैक्स कट जो कि हुआ है फर्स्ट जुलाई से क्या होने वाला है कि अगर आप 18,201 और $45,000 के बीच में कमाते हो तो पहले इस पे आपको 16% टैक्स लगता था। अब इस पे अगर आप इन के बीच में जितना भी इनकम आप है 18,201 और 45,000 के बीच में, अब ये 15% हो गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स होंगी, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं।
3: जी, सरकार का तो ये कहना है कि साल में इस बदलाव की वजह से $268 तक का लोगों को फायदा हो सकता है। तो नितिन जी, तनख्वाह के बाद बात करते हैं अब सुपर की, जहां इस साल का शायद सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है कि अब तक एम्प्लॉयर्स को अपना सुपर कम से कम हर 3 महीने में जमा करना होता था, लेकिन अब पहली जुलाई से पेडे सुपर लागू हो रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए और क्यों ये एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छी खबर है। और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं एम्प्लॉयर्स, उन्हें इसके लागू होने के बाद क्या तैयारी करनी चाहिए?
4: आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है एम्प्लॉयज के लिए कि 1 जुलाई से जैसे आपने बोला अब पे स्लिप सुपर का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है जिस दिन पे आपको मिलती है उसी दिन आपका एम्प्लॉयर आपको सुपर भी पे करेगा। और इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज के लिए जो आज 3 महीने के बाद उनको सुपर की पेमेंट मिलती थी, उनको देखना पड़ता था, उनको अब ये टेंशन की बात नहीं है। जैसे पे स्लिप आई, आपका अमाउंट लिखा जाता है कि ये आपकी नेट पे है और साथ में सुपर भी बोला जाता है कि कितनी है उसमें, तो साथ में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट सुपर में गई है या नहीं है। अगर नहीं गई है तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ में ही बात करें। तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज पे दो सुपर एम्प्लॉयज के लिए। और एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि इसमें उनको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो अपने पेरोल जो भी उनके रन करता है, चाहे वो खुद करते हैं चाहे वो अकाउंटेंट से करवाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि साथ साथ में पे के साथ ही सुपर पे करें। सेकेंडली, कैश फ्लो क्रंच काफी हो जाएगा क्योंकि आगे क्या होता था, आपका सुपर का अमाउंट जो ड्यू होता था वो होता था 3 महीने के बाद, बेसिकली 4th महीने में क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब क्या है कि आपको साथ साथ में जो आपका सुपर है वो साथ में ही देना है। तो कैश फ्लो की मैनेजमेंट मैं एम्प्लॉयज को बोलूंगा ध्यान रखें, अपने स्मॉल बिजनेसेस को बोलूंगा ध्यान रखें। और मैं हमेशा ये टिप्स देता हूं कि साथ में ही आप अपना एक बैंक अकाउंट नया खोल लें जिसमें आप साथ साथ में ही GST, सुपर और ये सारी साथ में ही डालते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर एवरीवन।
3: जी, ऑस्ट्रेलिया में बता दूं कि करीब 19 मिलियन सुपर अकाउंट्स पर इस नए लॉ का जो है वो असर पड़ने वाला है। अब बात उन परिवारों की जिनके घर नन्हे मेहमान आने वाले हैं। पहली जुलाई से पेड पेरेंट

0: लीव 120 दिन से बढ़कर 130 दिन हो रही है, यानी करीब 26 हफ्ते। पार्टनर्स के लिए रिजर्व लीव भी 15 दिन से बढ़कर 20 दिन हो रही है। और एक अहम बात कि सरकार की ओर से मिलने वाली पेड पेरेंटल लीव पर अब 12% सुपर भी मिलेगा। ये बदलाव उन बच्चों पर लागू होंगे जो पहली बार जुलाई या उसके बाद पैदा होंगे या गोद लिए जाएंगे। तो अब बात करना चाहूँगी कि जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग में लगे हुए हैं उनके लिए भी तो कुछ बदला है। पहली जुलाई से सुपर में अब पहले से ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं लोग। इसके बारे में बात करते हैं नितिन जी कि जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए इन बदलावों का क्या मतलब है और कैसे लोग इनका फ़ायदा ले सकते हैं।
1: सबसे पहले तो सुपर एनुएशन कंट्रीब्यूशन कैप्स जो आपने बोला वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने राहत दी है इन अ वे कि आपको जो कंसेशनल सुपर एनुएशन कंट्रीब्यूशन है वो 30,000 से लेके 32,500 कर दिए हैं। तो बेसिकली आपको $2,500 ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रॉम 1 जुलाई 2026 अपने सुपर में डालने के लिए। तो कंसेशनल सुपर आप खुद डालते हो अपनी तरफ से एज अ एम्प्लॉय और उस पे आपको सिर्फ 15% टैक्स लगता है इंस्टेड ऑफ कि आपके हायर मार्जिनल टैक्स रेट पे। तो ये एक खुशखबरी की बात है जो रिटायरमेंट्स के लिए सुपर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी नीति जी, टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है 31 अक्टूबर, टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 30 जून को, तो 31 अक्टूबर तक क्या इंतजार करना चाहिए टैक्स रिटर्न भरने के लिए या फिर टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जल्दी से जल्दी टैक्स भरना चाहिए या इनके बीच कोई स्वीट स्पॉट है जिसे फॉलो करना चाहिए, आपकी सलाह क्या है?
1: आई थिंक आपने बड़ा अच्छा बोला, स्वीट स्पॉट बिल्कुल है जी, ना जल्दी ना लेट। मैं बोलूंगा कि स्वीट स्पॉट है आपका सॉर्ट ऑफ एंड ऑफ जुलाई से लेके आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है अगर आप जल्दी करोगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो कि काफी लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं बोलूंगा रुक जाओ, पेशेंस करो। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रीफिल इंफॉर्मेशन काफी डाटा मैचिंग होती है एटीओ के पर्सपेक्टिव से। सो फॉर एग्जांपल वो आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपका इंटरेस्ट जो अगर आपने कमाया हो, अगर आपने टर्म डिपॉजिट या वैसे रखा हो बैंक से, वो काफी इंफॉर्मेशन लेते हैं और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन काफी आती है। तो वो प्रीफिल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर एम्प्लॉयर को, जैसे PFIG विदहोल्डिंग का भी इंफॉर्मेशन है, इनकम स्टेटमेंट्स है एंड ऑल दैट, हर एम्प्लॉयर को 30 जून के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। तो आई विल से कि आप जुलाई के एंड से लेके अक्टूबर से पहले पहले, 31 अक्टूबर से पहले पहले तक आप अपनी लॉजमेंट्स कर सकते हैं अगर आप अपने खुद से करना चाहते हैं या टैक्स एजेंट से। अगर आप टैक्स एजेंट से करते हो तो आपको कुछ और टाइम पीरियड मिल जाता है जिससे आप 31 अक्टूबर के बाद भी लॉन्च कर सकते हो, पर 31 अक्टूबर से पहले आपने एटीओ को बताना है कि मैंने टैक्स एजेंट के थ्रू लॉन्च करना है।
0: जी नितिन जी, इतनी काम की जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी बात कि यह सब सामान्य जानकारी है, ये निजी फाइनेंशियल सलाह नहीं है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर करें। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
3: और आपके लिए मेरे पास एक गीत है जिसकी रिक्वेस्ट आई है बवाल फिल्म से, दिलों की डोरिया। आइए सुनते हैं, जिसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।

0: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
1: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
3: SBS किक ऑफ,
4: द न्यू म्यूजिक स्टेशन सेलिब्रेटिंग फुटबॉल एंथम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
3: इट्स लाइव नाउ
4: ऑन DAB रेडियो, द SBS ऑडियो ऐप,
3: ऑनलाइन एंड SBS ऑन डिमांड।
1: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को और अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक तो ऑस्ट्रेलियाई टीम मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया की एक जीती जागती मिसाल है। ऐसे में भारतीय मूल के जो खिलाड़ी हैं निशान वेलुपिल्ले, वो किस तरह से युवा खिलाड़ियों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और कैसे फुटबॉल एक नए शौक के रूप में उभर रहा है भारतीय समुदाय में, आइए सुनते हैं नबील हसन की इस रिपोर्ट में।
6: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जुनून हर तरफ छाया हुआ है और जब हम ऑस्ट्रेलियन टीम को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, ये सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ऐसे मल्टीकल्चरल देश की तस्वीर है जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। आज इस खास ऑडियो पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं युवा पीढ़ी के बीच फुटबॉल के बढ़ते हुए प्रभाव और रुचि के बारे में, खासकर साउथ एशियन माइग्रेंट कम्युनिटीज से आने वाले उन लोगों के संदर्भ में जिनके लिए अक्सर क्रिकेट ही पहला पसंदीदा खेल होता है। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं सतेंद्र संगेरा, जिन्हें सैट संगेरा के नाम से भी जाना जाता है। सैट एक अनुभवी फुटबॉल कोच हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में

0: फुटबॉल के कई स्तरों पर काम किया है। पारंपरिक आउटडोर फुटबॉल से लेकर फुटसल तक उनका गहरा योगदान रहा है और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कई टूर्नामेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लीड किया है। सैट, सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुभव के हिसाब से कम्युनिटी लेवल पर फुटबॉल सीखने और आगे बढ़ने के लिए कैसे अवसर उपलब्ध हैं?
1: ग्रास रूट फुटबॉल सब कम्युनिटीज में है हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए कि वो वहाँ जाके खेलन और सीखन के फुटबॉल कैसा खेला जाता है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिटनेस वास्ते और खेल वास्ते। हमारी इच्छा तो यही है कि बच्चे जितना भी खेल सकते हैं वो खेलन, इसलिए कि उनकी देखभाल के लिए और उनकी हेल्थ के लिए और माइंडसेट के लिए ये खेलना और एक्सरसाइज करना और दौड़ना बहुत जरूरी है। और उसको सोशली भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट होता है बच्चों का। सो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटीज में, मेलबर्न में, ईस्ट से नॉर्थ से वेस्ट से लेकर बहुत ग्रोथ हो रही है फुटबॉल में। एंड कम्युनिटी क्लब्स बहुत हैं जो चाहते हैं कि नए बच्चे आके खेलन और सीख। And, बहुत बढ़िया बात है ऑस्ट्रेलिया ये पेश कर रहा है हमारी कम्युनिटीज के लिए।
0: अच्छा, कई साउथ एशियन माइग्रेंट परिवारों के लिए सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल जैसे अन्य खेलों से परिचय और रुचि बढ़ना भी एक बदलाव का हिस्सा है। इसमें आप पेरेंट्स की भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: पेरेंट्स सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे, हमारी बेटी ये सब खेलें। Or what we as parents like to see is our children grow up to be a part of their time. So, बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, जहाँ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ जो भी खेलते हैं, हमें वक्त मिलता है उनके साथ गुजारने का। और वो वक्त बहुत कीमती है, करके मेमोरीज क्रिएट होती हैं। तो ये मेमोरीज बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों के साथ जाएं और आगे वक्त गुजारें, फुटबॉल में, जहाँ क्रिकेट में, जहाँ AFL में, जहाँ स्विमिंग, पियानो में, जो भी है, हमें जरूरी है बच्चों को भी देखना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। सो वी कैन सपोर्ट देम एज पेरेंट्स। बच्चों को मेसी अच्छा लगता है और रोनाल्डो अच्छा लगता है, जहाँ सॉकरूज अच्छा लगता है, तो फिर वो चाहेंगे कि वो खेलें। कहाँ खेलें? क्लब में। और जब बच्चे शौक दिखाते हैं और खेलते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है, तब माँ बाप पुश करते हैं, पुश नहीं, सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को ये अच्छा लगा, हम उसको और मौका दें।
0: इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में निशान वेलुपिल्ले ने भी अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, जो इंडियन ओरिजिन से आने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक है। ऐसे खिलाड़ियों का युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है?
1: अमेजिंग है ये बात, ये जब हमें हमारा अपना दिखाई देता है इस लेवल में। पहले से ही हम तो क्रिकेट के बैकग्राउंड में से हैं। पहले ऐसा होता था कि हम यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, सब सोचते थे कि हम क्रिकेट प्लेयर हैं। बट उनको अब टाइम बदल गया है और लोगों को मालूम पड़ गया कि हिंदुस्तानियों के भी, और नॉट जस्ट हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से लाके, बांग्लादेश से लाके, नेपाल से लाके और श्रीलंका से लाके, सब को फुटबॉल आता है। और हमने दिखा दिया यहाँ पर, अब हमारे बच्चे सब अकेडमीज में खेलते हैं और क्लब्स में खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ बॉयज नहीं, पर बेटियां भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एट द मोमेंट। एंड ये दिस इज गुड न्यूज, एंड ये हमें सपोर्ट करना चाहिए।
0: आइए अब सुनते हैं निशान वेलुपिल्ले के विचार, जो एंग्लो इंडियन और श्रीलंकन तमिल एंसेस्ट्री से जुड़े हैं। निशान ने सॉकरूज के लिए 2026 फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू किया है। उनके इस सफर में उनके माता पिता के लगातार सहयोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
2: I guess get adapting to the world in Australia and learning English and everything that's required, but also it's just a lot of days where they're driving you to training, and they come back from long hard days of work, and they're willing to put your dream first. And I think I'm forever grateful for that. And like I said, if I can repay them with a World Cup appearance, I'm sure they'll be happy with that.
0: ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल देश है और नेशनल फुटबॉल टीम में इसकी झलक साफ दिखती है, जहां अलग अलग देशों से आए हुए खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हुए अपनी पहचान बनाते हैं। निशान इस डाइवर्सिटी और टीम एनवायरनमेंट के अपने अनुभव को भी हमारे साथ साझा करते हैं।
2: I think we're one of the countries where, you know, I think you look across the board, we got, you know, all these different, you know, backgrounds, and I think that's what makes Australia and our squad really special. You know, with different cultures comes different personalities as well, and I think that's why, you know, we're called a family here, and yeah, I think, you know, it showcases on the field as well, and yeah, I think you'll see that on Saturday.
3: One final one for me. You talked about your Tamil heritage a little bit. being the first, what does that mean to you, that being the first to play in a World Cup from Tamil background? And also, are you hopeful that there'll be more Tamils coming along after you?
2: Yeah, I think, you know, yeah, it's a proud moment for me and my family. And I think any culture, you know, it's. I hope there's more, yeah, of course. And, you know, I don't really... discriminate of any culture. I just hope that, you know, everyone's allowed to play the game, and whoever makes you know, into a World Cup, I'm more than happy for them. And yeah, it's a proud moment for me and my family, but yeah, I'll try and yeah, I guess make them proud.
4: बस इतना ही आज के SBS हिंदी के शो पे। फिर होगी मुलाकात। आपको इस गीत के साथ छोड़ करके जा रही हूँ। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। DJ वैशाली को इजाज़त। नमस्कार।

0: SBS South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay, 'cause I want you to stay, 'cause I want you to stay।

तू, वो जा रहा है कोई शब्द गुजार, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर।